0: है सीना, तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो। तौबा तौबा क्या होगा, होना है जो वो होगा, होता है जो हो जाने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा, तुम ना मानो तो जाने दो।
1: रेडियो सारंग 107.8 FM।